ये बापर छी वंजा जे लुया न शा ख्यो के के दान छुं हिं मुगु ला दी हि जिन जि पिन दान हि लु जि सिन गा हि जु थे दे ना सिन जो लिन जि ने गंग जिन खा वे युं सो के जा छि ये बा पर छी वंजा जे दों वे निन जि दिन बे लु ये हि थो जु बे सिन रो